0: रुमाल छे पैसे
1: छे
0: पैसे रुमाल छे पैसे
1: किसने
0: बोला छे रुमाल छे पैसे छे पैसे रुमाल छे पैसे छे पैसे रुमाल छे पैसे छे पैसे रुमाल छे पैसे
2: कितने का है रुमाल
0: छे पैसे का जी
2: चार पैसे का नहीं दोगे
0: है कहा भाई कम की का नहीं
3: है दो पैसे का
0: देंगे
4: बिल्कुल मही है
0: पैसे भी तो चाहिए नहीं रुपए चौदह आने का नहीं आता था रुमाल जो है वो एक रुपए चौदह आने का आता है यहाँ पैसे भी तो चाहिए
4: गाड़ी की तरह आए
5: तो वही गाड़ी का रुमाल है
0: मलमल है छह पैसे रुमाल छह पैसे
6: किसी ने बनाया कितनी ही कोशिशें की लेकिन सब कुछ करने के बावजूद आपको वो नतीजे नहीं मिल पाए जो आपने चाहे थे लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं अब आप 5 मिनट से भी कम समय देकर वैसा शरीर हासिल कर सकते हैं जैसा आपने हमेशा चाहा था क्योंकि अब आप अकेले नहीं है आपके साथ है लाजवाब और बेहतरीन फिटनेस पंप।

0: अगर तुम्हें अपनी जान से प्यार है तो अपना पुराना धंधा शुरू कर दो। कल जो हम यहां से गुजरे तो तुम्हारा यह जुआ खाना नहीं है, मुख्तार सिंह का वही तबेला देखे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम भी गाय भैंसों की तरह घास चबाते हुए नजर आओगे।
1: Et on enchaîne avec une reprise.